फुङकाहम जतन खापाङनी हामजाकमा यापरै टापुक चेङ्गो चिनितिनी फुङनी उज्जैन तिमी ककबोरक पाण्डा अनि खापाङनी धाकटी बुकसङ हानि हाई नङबाई तिनी सालकामनी पान्दा तेई कसारा हुङ्गाङ्के हायन खरङ पान्दा आबुन लहाँ यही सालकामनी पान्दा हो कक सालाङ बगै आं फाइजाक ओ फुङनी सालकाचाङ जराव हाँ पैलाओन फायदी जो जतन मतने लबी रेसा पुंग विशेष तीन ना पानदान चेंगे लेना पानदा आवाई खिले दो सारा पॉइंट मेगा हार्ट हाँ फायदी नरनी बगे पुलियान कैसा तीन साल जतनी बे काम थे कक्सारे और रेसा पुंग विशेष चेंगे लेना तीन पानदा

जिनी हाइन खरा पान्दा पाइमानि आगुल अनि खाबांनि दाउदै बुक जों जरा किसेस दंसु नों माय कक सालाइबो

आइमांगलाक मिनिट कैसास दंग आजारा रगो आं कक सापिनायजों बाय गां किसा आबोनो सानाय जों सेलायाव नै जों सेलाया गांके प्लास जिनि अमहाय सामुरख लायनानै बिसिंतै दिनै नक नुखुंनि गोबांमा सांग जों जवाजाकनि थांग फुंगाजि बासै जों दमुं जिनि पजिटिभ जों जे वानसुमनि बिसिंतै दंखांके नि नासिक मुं निनि वानसुक मुं गोबांनि पजिटिभ फुंगांके असंसारो नों रां पैसा गोरि फानो रां पैसा जिनि आसा गोबांबो नांगिया चुक द्रप चा द्रप टंग द्रप गांके नंगौ जिन बागै हायदिबा किन्तु जों आबुनंगुल' खासिगिनाय जिनि पजिटिभ जे वानसुक मुं नसं हासाला रहरनि टं हांके नों असंसारो दिनै सागरनो गाहाम गोदाव जा गांके नों कस्त' मोनाय हायसि आउन बागै जों जे मानसा बाहायके गाहाम गोरोंखौ टंगैनाय जिनै साखनो गाहामखौ टंगैमान आबुनो फारि वानसुक लायनाय ब्याम खालायदि फुङासिनि साखबो गाहाम दंनाय दिनै किसा मिसा रां आजिनानैबो जों जरा मानिमोन बबेहायके जिनि गोबांमा माहाय थाय दङ जिनि गामियामसैयाव जों अजागा फाथानि मोखै जों थाखै जों पाइसे एफानांगौ नों मसा किसा गायदि दिनै गानागिनि अ जिनि गोबांमा थाय दङ आर थायो किसा मिसा नि मोखै जों थाखै जों गायखांके नों बाजार हाथायाव पाइबो सान नांगिया प्लास नों आबो किसा मिसा फालि बाहायनो रां पैसा आजि मानो दै नों हेल्दि फुडबो जायो मानो आनबागि फारि पजिटिभ थिंकिंनि बिसिंतै पजिटिभ वानसुं बिसिंतै दिनै जे खालायमानि जों किचेन गार्डेन होनि खालायमान दं जों नंगौ स्कुल दङ आबाहायखौ नों बाहायनो खालायनाय बिसा मिसा रांबो आजि मोनो दे प्लास दिनै नांमानि सामग्रुनो बाहायनो नों अर्गानिक सिस्टेमखौ जावै दिनै सागनो गाहाम गोदानै मोनो सानबाय फारि पजिटिभ अनसुमन बिसिंथै जों बाहाय गाहाम गोरों दङ मालाय आबुनो नायलायनाय आंहानि फायफिनाय दिनै हायनो खरां बान्दा बायमानि आगोलाव जथन हामबाय दै हायनो खरांनि उलाव हायनाय सालखामानि बान्दा गिल फायनाय

0: कुनै छाउ फिकुङ आबाके तङ्गेउने फरी जतन बायापका हम नक नखुङ्ग बताब हयुङ जतन का हमके तङ्गलाई वान बिसिङ तै जों बुस बुस काङ बा बायके तङ्गैमान आपुन फले नाइले जाय खर्च खर्च असंसार सुङ जतन नांगो खर्च खर्च सुबासु माननानी खरक्सै मेन्टली फनाबो रां पैसा तङमानि बिसिङ तै केबनि रां चबासु नाङ याङ मनो बिनि मेन्टली देफ्रु बिनि डिप्रेसन तङ आफ्रु सङमे मनो आवाके पन सपोर्ट खाइ मनो केव केव बा बेलेकिनो हामिया जाया जराव तंमाने गो आजगो ठीक आसे नों रां रिबाय सबाय मे एफनो मनो साक मां थांगिले जों सबाय मनो हायसि आबेखे जों पजिटिभ नि बिसिंते बेवगन आपन ख्लायनि हा कांके ओ संसार बेलायसे नायथक जों जेसन फनो जदि नेगेटिव वान सुखा के नेगेटिव दं नै हायसि आन बगै फाडि जों पजिटिभ वान सुन बिसिंते साक कामके तंमान बिसिंते बाहेके जिनि ओ नक नक नुनो जिनि संसार नते मनाय थक ख्लायमान आबोन जों वान सुखलायनि ताखिसे कक दुनाय गरा फंका हम अनि खबंनि रांचाकनि खबंनि दाउटि बुकजों ककटोसन गावमोन सालायो हेलिबा जों पजिटिभ थिंकिं पजिटिभ वान सुमुन ग्रिमिन बगिनि दाउनि अजराव जों नक नक बुदाब हयुं फनांथों जेस फनांथों जों हाजालाङै थाङो बायरो जों हाजालाङै थाङो जों जेफोरनि जिनि सासुं साखायसिनो नेसि वान सुगु जों सेल्फिसनेस मुंगिमिया सेल्फिस निजिनि साक्सा नसिमि कतनांनान बगि जों वान सुख्लायो दाउनि अजराव जों सेल्फिस बरमां नुगु खर्चा खर्चा बाहेके गाज्रि बिनि आं साहा गायथांमान खर्चा खर्चा हामिया ख्लाय बाहेक साहा गायथांमान आबो आबो मां जिन ट्रेडिसनाव जों फायमानि नुगजागौ दाउनि अजराव जोंनि सारा रुनो बाहायनो आं सानामो जों नारगु हानो थोंमोनगो इनभल्भमेन्ट ओंदि अमाहाय नां नुया ड्राग्स रक सावैनाय नां नुया अबाहाय थायरगो दा थांलायदि दामै नरखिसिनि थिनां तुमुं केबो खोनाय दं आं नंनाबो सानामो जोंगौ अ टंथक साल सालिनि बागैसे जेफोर नों थंगोखलाय थाङोनो मानिनि बायब्रक दिनै फानदंफोरजों नों गुसुग बेरामो दं मानोबा नों फानदंफोरजों नों सामुं खालायमानो खिन्थु आल्टिमेटलि उमर जतननि फायखांखे आफ्रुंखांखे जों बहाय बेवा थांखलाय आबो नंगौ सायमानाय थाखायसो कक दुनाय गैया फंकाहाम
1: हेलौ
0: दारा फंकाहाम आं माइलामरानि নি পাৰাখে পাৰাখে আৰু বিয়াং বহাগ লাগা
1: আপুনি
0: হেঙ্কে নাই দি নং জেফুনি বকা হামিয়াঙি টানে নি ফেস চুটু সে কসম মুই টো না বকা হামিয়াঙি টংফ্রে মখান চুটু কসম হাইঙি টো আপনার নি চিনি যে এপিয়ারেন্স গুসিজাগি থাকো নং বড় খরচা নুখাঙ্কে সাইমিয়া দিবা যে এই বলে কিসা বকা হামিয়াং টংখানা তার চিনি এক্সপ্রেশন চিনি নুকজাং মাসে আমা হাইঙি টাকো আমি বইন সঙ্গ সংসারও ফাইকা যখন ঠিক ন যত ন জরাও অমহায় স্ট্রেস ফাইও বা কেমনি হামিয়া জরা ফাইও কেব দুঃখনি জরা ফাইও হাইফেন টাম খাই যাইছে আপনি অবার কামা খাইলে আহিছে
1: কে নাই সাইমানো কিগত আছে গান কে

छा चुखरु कुरु अब कबा मानो चीनी थानी सैनानी हिंके आइडिया दं ते बरी नायथक चला नायथक सिकला जरा बोरा चराय कबा मानो दं अबरग्नते नरक सैमानो सैने नरक वान सुख बायसिमिया सैका हांगांकाय अब तरगो चीनी वान सुख मानि बहाय न जों चीनी बखर कायसा पनो अब जों जरा जरा पगै फान थांगै मानो मुइतो मायांगै मानो अबा हिके जों जेफ्रु मुइतो मानो अफ्रोन सुइने सुइयो चीनी जेफ्रु पनो सुइने रखंगे ताम खलाय जेफ्रु मुइतो मानो जेफ्रु थांगै दं मानि फानंका गारि फानकाय थां दं हा बाइक फानकाय थां दं हा अब तो सुइने रक्त कायसा ब्रग्ने वान सुख मुंगन जरा ब्रह्म बरनि वान सुख माव दं फाचा जेसा कक मुइतो मानि रेखाखा बरक लगलगिन नोट खायो लगलगिन सुइयो कक थायसा बायनो बरक गोबां मा कगलब तां साख्लाय मानो कगलब कायसा ख्लाय मानो अबहायनो नरक बहायनो द्रुक द्रुक सोरंगा हांगे सैते सैते हांगे से बेबाक न फायनाय अबहाय अबनि बागै पैला सैनानै जेंनानैसे नांग्रावो

0: ที่นี่เขาให้ขึ้นบ
1: ่อ
0: ได้ยอดเราไปต่อให้นี่ก็รู้สึกใครเรียนแค่ว่าที่นี่ชาวเขาชิ้นหนึ่งต่อตา
1: อ๋อเจ้าต้องใช้ไหมเน
0: าะเดี๋ยวใครกองกลางเราให้ชาวกระลาขันดมไป
1: เดี๋ยวนี้นี่บน
0: นั้น
1: ชาวนามุสุมานี่เมสเซจเรานามุสุมานี่เอาไปใช้ไหมเนาะ
0: เดี๋ยวจะมึงแกอ่านามุรังชาวกระลาดมไป
1: นี่นบุมุกตามจังกันปิจูสังกันมั้ง
0: ปิจูสปิจูส
1: ปิจูสใช่ดิบุนับบาร์สดิ
0: กาหน้ามันใคร
1: 87 87
0: บุคลายตอนก็ชินารุฟงตับบุ
1: อ้าว
0: กาย87 9814 62 55
1: อ้าว
0: 8 7 9 8 1 4 1 4 6 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
1: आओ चिने ताकोक पीजूस जे बोबो कहाँ के खाना सुगली या के वो या खरे बदलो हापना नहीं है के बाद चुबाना नहीं या खरे बदलो तो जरा जगा जगा थंगे चुबाई रोग बतांग लाये माबा गा चुबाना नहीं बदलो फन हापना मुसुंग जा खाना अंके अब ने बागे करंगना नहीं रोग मुसुंग जा मन इंके ना अंके करंगना नहीं इंके अंके या खरे बदलो भाई चिने ताको पिजूस बो बार तो माबा बिनी नंबर नो बो रखा खनाई मान खाके बनो रोग खाना खाके बतो ना रोग ना रखना नहीं खाक लायो अंग हैं हैं नो नो शायर वन बिनी नंबर 8798146255 ओ कोक दुख नी मारी चिने ताको पिजूस नी फरी हैं हैं नहीं ने कोक दुख शा बतो हेलो हेलो
2: हेलो
1: फरी के चंग बेबक नो चंग कोक रोबो कबंग मन शालाई क्या रांसा मुंटांग सा खना लाये नो जरा वो खना तो तोग रसा मुंग चीने ताको मो रसा अपना रसा मुंग का चीने ताको बिरोलाल जोमातिया बाय रसा अपना रसा मुंग फरी चंग खना लाये ना

0: आफ्नो हृदय अब रिसे त बिन्द चामुरी दिता
1: आउ नारायण सखी जमाती होइन
0: खेलाङ्गी बुबर मतम त्यसरी ताले ताइले ताइ मतम लाग्छ हिँड चामाता
1: आउ द तंखे खनारोन बेलाके ना हम बाई बाई करंग माने बागे हम बाई आओ फरी के चीनी कोई हर जग रिसाप मुं अब ना खना लाये ना बेले खना तो तो ताई तिनी नी ओ जोरा ओ बो ओ बो नो ओ रिसाप मुं बेले नो मुसांगी तोंग माहे नांगी तोंग माहे जो तो नी लांग माओ नो फरी खना लाये नो रिसाप मुं ना

जों खोनाथक पान्दा रक्त गोबांमोन खोना लायबाय खाथाबो हायनो हायसो चेंजा अखा खोनाथक खरां पान्दा खोनाथक खरां पान्दा अंके जों खोनानानै खोनाथक खरां बाय खोनाथक कक थाय बाय रोसाब जाग रोसाब मुं रक्न फारिखे जों पैलाव खोनालायनाव ताजिंग न

0: ऑर्डर ऑर्डर, ये अदालत मुलजिम गोविंदा को मुजरिम करार देते हुए 20 साल कैद बा मुशक्कत की सजा सुनाती है।
1: राधा

0: परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। साथ ही में माननीय प्रधानमंत्री इस अवसर पर किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त भी जारी करेंगे। आइए आपको सीधे कार्यक्रम में लिए चलते हैं। विवरण दे रहे हैं सिद्धार्थ कुमार सिंह और वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव।
1: श्रोताओं, आज का दिन पश्चिम बंगाल के लिए बेहद खास है क्योंकि आज है पश्चिम बंगाल दिवस और ये दिन 1947 में बंगाल विधानसभा द्वारा पारित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उस ऐतिहासिक प्रस्ताव की याद दिलाता है जिसके तहत बंगाल के विभाजन के बाद पश्चिम बंगाल एक अलग राज्य के रूप में भारत का हिस्सा बना। और आज पश्चिम बंगाल दिवस के दिन देश के किसानों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए आज पीएम किसान उत्सव दिवस भी मनाया जा रहा है जिसकी मुख्य कार्यक्रम का आयोजन तारकेश्वर में किया गया है। आपको बता दें कि तारकेश्वर जो कि पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में स्थित है, इसे बाबा धाम या शिव का शहर भी कहा जाता है, जहां पश्चिम बंगाल दिवस के साथ साथ आज का दिन पीएम किसान उत्सव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस विशेष अवसर पर अब से कुछ ही देर में माननीय प्रधानमंत्री महोदय प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी पीएम किसान की 23वीं किस्त जारी करेंगे और इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मैं हूं आपके साथ सिद्धार्थ सिंह और मेरे साथ हैं मेरे साथी कमेंटेटर वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव।
2: एब्सोल्युटली सिद्धार्थ, अ ग्रेट डे फॉर द स्टेट ऑफ बंगाल, अ ग्रेट डे फॉर द फार्मर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ द कंट्री, अ विकसित बंगाल, अ विकसित भारत, अ डेवलप्ड बंगाल, अ डेवलप्ड इंडिया। The resolve to make the country a Viksit Bharat, a developed India by 2047, to make the lives of the people of our great nation safe, successful and sustainable, to help and assist our farmer brothers and sisters have the lives that they have always dreamt of. This is the mission of the Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi, who has made a vow to make India world class, the India of our dreams and aspirations. Prime Minister Sri Narendra Modi will release the 23rd installment of the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi PM Kisan scheme to the eligible beneficiaries on the 20th, that is today, which is also the West Bengal Day because it was this day that the West Bengal state was founded. From Tarkeshwar, located in Hooghly district in West Bengal, the event will be organized by the Ministry of Agriculture, Government of India with the support of the Government of West Bengal. An amount exceeding 18,880 crore will be transferred directly into the accounts of over 9.44 crore farmers in the 23rd installment. Over 2.18 crore women farmers will receive the benefit during the 23rd installment. Siddharth, truly a day to celebrate India of tomorrow, truly a day to celebrate the vow that the Prime Minister had made to the people of the nation that yes, India will be developed, India will be the India of our dreams. And we will never ever leave our farmer brothers and sisters behind.
1: बिल्कुल वैभव, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में जैसा कि संकल्प लिया है माननीय प्रधानमंत्री ने और जिस तरह की बात चल रही है ये

0: बहुत बड़ा कदम है और आज जबकि अब से कुछ देर में माननीय प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान की 23वीं किस्त जारी करने जा रहे हैं और आपको बता दें कि इस किस्त के अंतर्गत देश भर के 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। और खास बात वैभव यहाँ की यह है कि इस किस्त से 2 करोड़ 18 लाख से अधिक महिला किसान लाभान्वित होंगी। तो ये एक वुमेन एम्पावरमेंट की जब हम बात करते हैं वैभव या महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं उसमें भी एक बड़ा कदम है। और आपको बता दें कि जैसा कि पश्चिम बंगाल की हम बात कर रहे हैं, अकेले पश्चिम बंगाल में ही 45 लाख से अधिक लाभार्थियों के खातों में 900 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा की जा रही है, जिसमें राज्य में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान के अंतर्गत कुल जो वितरण राशि यहां पर है वो 15,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी। और ये भी बता दें कि 2019 में योजना के शुभारंभ के बाद देश से भर में कुल वितरण राशि जो थी 4.46 लाख करोड़ थी और उससे ज्यादा हो गई। अब तक 22 किस्तों के माध्यम से लगभग 4,28,000 करोड़ रुपए देश के करीब 9.5 करोड़ किसानों के खाते में सीधे हस्तांतरित किए जा चुके हैं। तो वैभव ये एक जहां एक ओर हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं वहीं दूसरी ओर किसान सशक्तिकरण की भी बात चल रही है, क्योंकि जैसा कि सरकार का उद्देश्य है कि प्राथमिकता हमारे प्रधानमंत्री की किसानों को आगे रखना, किसानों को लेकर इस विकास यात्रा को आगे रखना है।
1: Absolutely, Siddharth, to make the incomes of the farmers go double and triple. When the country develops, we have to take care of every person in the nook and corner of the country. The policy or the basis of the foundation of all the missions, which is Antyodaya. When we keep the last man in mind, we always keep the fact in mind that yes, we have to grow the country, we have to make the country develop, but we have to keep each and every person in the policy, in its execution. We have to take everyone along. And today's event, Siddharth, will be graced by the esteemed presence of course, the Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi, and apart from him, the Governor of West Bengal, Sri Arun Ravi, the Chief Minister of West Bengal, winning a historic election, Sri Suvendu Adhikari, Sri Rajiv Ranjan Singh, the Union Minister of Panchayati Raj, Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Sri Ashwini Vaishnav, Union Minister of Railways, Information Broadcasting and Electronic and Information Technology, Sri Shantanu Thakur, Union Minister of State for Ports, Shipping and Waterways, Sri Sukanta Majumdar, Union Minister of State of Education and Development of Northeast Region, Sri Samik Bhattacharya, Member of Parliament, among many other distinguished guests. And Siddharth, many schemes and many events have been organized across the state and the country in district and block levels and Gram Panchayat levels with the support of the KVKs and local agriculture officers, celebrating the day of the release as PM Kisan Utsav Divas. Excitement across the people, farmers gathering at the event, continuous craning of the necks. They are all happy and they wish to see the Prime Minister and they wish to see the promises which the Prime Minister did come true.
0: बिल्कुल वैभव, जैसा आपने कहा कि यहाँ पर जो जनमानस है, माननीय प्रधानमंत्री जी अब से कुछ ही देर में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे और यहाँ तारकेश्वर में गणमान्य अतिथियों के साथ विशाल जन समुदाय प्रधानमंत्री जी को सुनने और उनकी एक झलक पाने के लिए मानो उमड़ पड़ा है। और जिस तरह से बंगाल की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अपना भरोसा व्यक्त करते हुए जिस तरह का विशाल मैंडेट दिया है, आज बंगाल की जनता अपने लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन की उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रही है। और जैसा कि हमने बताया कि आज इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल माननीय श्री आर एन रवि, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री माननीय श्री सुविंदु अधिकारी, माननीय पंचायती राज एवं मत्स्य पालन पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, माननीय रेल सूचना प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव, माननीय पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग राज्य मंत्री श्री तनु ठाकुर सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्ति यहां पर मौजूद हैं।
1: एब्सोल्युटली टू सी दीज मिनिस्टर्स दैट द पीपल आर वेट फॉर एंड द पीपल हैव एक्चुअली वोटेड फॉर दीज मिनिस्टर्स हु विल नाउ बी ग्रेसिंग द स्टेज। It's actually a very exciting day for everyone. It's not just the financial benefit that is being transferred. It's not just the fact that the PM had made a vow, he had made a promise, and that promise is being coming alive. That promise is, proving to be correct. But the fact that

0: वेलकम टू माय एकेडमी।
1: स्पोर्ट्स कोटे से अगर किसी मेडल दिखा के घूमना है ना, तो जो मन में जीत के अलावा और जो ये सोच

बंदों को किताबों के बोर्ड में झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन चला डाला।

News on AIR Aptai, Twitter by Facebook platform AIR News Alerso, YouTube Naidi, News on AIR Official, Obono Karibo Akasbani Agatola Kendrani Koktama Adet Manan Hinke, Twitter Eba X Handelo Akasbani News Agatola Facebook, AIR News Agatola Tai, YouTube Akasbani News Agatola, O Naina Nangana. खना फिल्चिनै हायुङ जोगा साल हायुङ गनांगै अ जोगा साल पालाय जागना ताक्लायनि अ सालनि वानसुक मुं उंखा काहाम करों अकरा रोगनि बागै जोगा हुकमु कक चंगलाय नक भारतनि काहाम उंजा खुकुमु लायबुमा ताई जोगानि रायदान थानसेके खना हा कतर गनांगै करों सारा थाय कतर आलायदा हायुङ जोगा सालनि पांडा संसावान मन्त्री बखरक नरेन्द्र मोदी खना कलकत्तानि रेड रोड हायुङ जोगा सालनि पांडाव मानजागना त्रिपुरा हास्ते बखना हायुं जोगा साल पालेना बागै मजामत तयार खलाइजाखा फिलसिनै हायुं जोगा सालनो रग सकां सालथां हांखर जोगा एसोसिएशन बसंनि आयुष मिशन ताइ भारतनि रेड क्रस सोसाइटीनि खथासाक साखथारमा बायदिनि रेली कायसा संजाजाखा अ रेली आगरतलानि रेड क्रस सोसाइटीनि बिस्कानि सिमिसेंगै आउलनि जुदा जुदा लामा तैलाय उज्जन्त नयुंमा बिस्कांगो फाइ पाइखा रेलियो मानजाखा सालथां हांखर जिल्ला परिषदनि कासको विश्वजित छिल हास्ते थं नायमथानि थंगनाय मठानि तांकरा सुकांत घोष त्रिपुरा जोगा एसोसिएशननि तांकरा दिव्येन्दु दत्तताय सोरोंनाय सोरोंनाय जोग्रग खुरसाइमानो खना हायुं जोगा साल हाक स्टेवब पालाय जागना खना हायुं जोगा सालनि सिकांग तिनि बिलुनेनि जुग माया कालिबारि हो जोगा शिविर कायसा संसा जाखा अबन आरो जोगालिजाक पांडव मानजाखा जुग माया कालिबारिनि कासको डाक्टर जगदीश नम सालग्राहां करने हांकर नायकलपां महम्मद साज्जात पि आकसं आरो निजुगा सिफिर न कम थिंखा जुगा गुरु बाबुल बैद्य जुगा करों हरिशंकर दत्त हा कतर गनांगै बाताय मुंनि जुदा जुदा आम जोगमुं रोंनिया प्रिताय सामुं मानथग्रमा तांहलक नतेयै बेलाय वान जाकमानि कक साखा प्रदेश कंग्रेस दिने आगतलानि कंग्रेस भवन जोगालिजा कक तमा थमनाय रोगनि कक मालाय मुंग प्रदेश कंग्रेसनि खुकफां प्रदीप चक्रवर्ती ककसिल साखा हास्ते सामुंमान या बरकबांगमानि मारि बसंनि मारिनि स्लाइ गोबां बहाफांनि जुदा जुदा नायखंग बुक्सा आसुक थायो दाक्ति छेबुग बरक तिलांनानि सानखा नैसाय नैसिद खायंका फुटबलनि पाइथाक थंमुंग कायनियो ब्राजिल गोल कायथाम बुक्सानि फेरबाय हाइतिनो मेचेनखा यां गुबुनि फाइसिं पेरागुया गोल कायसा बुक्सानि फेरबाय तुर्किये न मेचेनखा यां बायथांनि फिल्नै थंमुंग ब जुगालनाय हा कतर मेक्सिको ताइ मार्किन जुक्तराष्ट्र राउन्ड अफ 32 थाइ मानसुकनाय ओंखा अबन करै मार मार थंमुंग कायनिय सेमनम बाय ग्रुप सिनि सिमिं ग्रुप डि अफ तुर्किये नि नक आउट बेरेम कासानानि वानसुक मुं पाइ थांखा भारतनि जरानो रगि तिनि हरनि दामसातामै सति थामजिय नेदारलेण्ड बाय स्वीडेन थांलायान अबनि उल हरनि दामसातामफोरो जार्मानी बाय आइबोरी कोस्ट थांलायान खना आइचुकनि दाम बातामै सति थामजिव युकेडोर इकुएडर बाय कोरासाव थांलायान त्रिपुरा फुटबल एसोसिएशन बाय कम थिंचाक अरनि फिल्ड थाम डिभिसन लीग फुटबल बाताइमुंनि तिनि थुमुं कायनै ओंखा उमाकान्त मिनि स्टेडियामा संसारजाक पुइला थुमुंग जम्पुइ जल्ला प्ले सेन्टार गोल कायनै बुक्सानि फेरबाय एक फाइ फुटबल क्लाबनो मेसेनखा उल आरन संसाजाक टाइकासा थमुंग युनाइटेड बीएसटी गोल कायथाम कायनैनि फेरबाय कदम तली जुब संस्थान मेसेनखा बिस्कां दाम नैसिब्रैय सालग्रा गुमति सालसि दलाय हांखर फेरां कगै गोबांखे वातै वाय मान होनै हजाक मुंरखा नबारदै बेरनायखं खना सालनि तुंमारि साख 33 डिग्री सेल्सियास ताइ खामाव 25 डिग्री सेल्सियास नि गानागिनि तंगै मान तिनि सालनि तुंमारि तंगमानि साखाव 34.7 डिग्री सेल्सियास ताइ खामाव 26.2 डिग्री सेल्सियास पाइरना सकां तिनि नि कक्तमा बुबाग्रक ताइ सेपरु मन्त्री बक्रक नरेन्द्र मोदी तिनी पश्चिम बङ्गनि तारकेश्वर र प्रधानमन्त्री किसान सम्मान निधि योजनानि फिल निसी थामकिफिनि राङ्न हुकबार क्लाइन रोगनि बेंक एकाउन्ट दादाक सिदाक रेखा निट इउजि नैसाय नैसि दग बिसिनि आमजकमुं उंफिर मुं खना ओंगाना खना फिल चिनै हायुं जगा साल हायुं गनांगै अ साल पालाय जागाना त्रिपुरा फुटबल एसोसिएशन बाय कम थिंजाक अरनि फिल थाम डिभिसन लीग फुटबल बाताय मुंनि तिनि थंमुं कायनै ओंखा कक्तमा तिनि नि बागै अरन पाइखा उलनि कक्तमा अय ओंगाना खना फुंदाम सिन्तामै सति ब्रिजिव

0: बिहेविंग लाइक अ टीनेजर. मैं उसका इंतजार क्यों कर रही हूँ?
1: शिखर, हाय.
0: हाय.
1: आज आप जल्दी निकल गए.
0: आपको कैसे पता?
1: विजिटर्स बुक. आज हम भी आपकी नगरी की तरफ जा रहे हैं. अंधेरी
0: ट्रैवल करती हूँ.

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत को शांति और सहयोग का पक्षधर बताया। कहा, वैश्विक संकटों और युद्ध जैसी परिस्थितियों का समाधान संवाद और कूटनीति से ही संभव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनजातीय समुदाय देश के विकास में महत्वपूर्ण भागीदार बन रहा है। ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त जारी की। 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों के खातों में अंतरित। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व करेंगे। नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा कल, परीक्षा केंद्रों पर कड़े सुरक्षा प्रबंध। ईरान ने युद्ध विराम उल्लंघन के बाद होर्मुज जल डमरू मध्य फिर से बंद किया। और चेन्नई में तीसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीती। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है।
1: देशर प्रधानमंत्री भावे दायित्व ग्रहण करिवा दिनरु
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पदभार संभालने के बाद से राष्ट्रीय हित में कई कदम उठाए हैं। इस महीने उन्होंने लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने का रिकॉर्ड बनाया। मैं सभी

0: नागरिकों की तरफ से इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई देती हूं। मैं कामना करती हूं कि वे देश के लोगों के हित के लिए निरंतर काम करते रहें और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार करने में राष्ट्र का नेतृत्व करते रहें।
1: यह मोर आंतरिक कामना।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया।
3: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास। इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
2: इस दौरान ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त के रूप में 18,880 करोड़ रुपए जारी किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा।
3: साथियों, आज पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में पैसे भेजे गए हैं और पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए एक और खुशी की खबर है। आज से राज्य में पीएम फसल बीमा योजना शुरू की जा रही है।
2: प्रधानमंत्री कोलकाता में कल आईएनएस दुनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय का अनावरण करेंगे। इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: एक्सप्रेस स्कीम के टेली लोन नए बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लोन के टोल फ्री नंबर 1-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल विश्व भर में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रेड रोड पर राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे शुरू होगा।
2: संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थलों और योग परंपराओं को जोड़ते हुए देश भर के 100 विशेष स्थानों पर योग के विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस पहल के तहत 12 प्रमुख स्थलों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें नई दिल्ली में लाल किला, उत्तराखंड में हरिद्वार, उड़ीसा में कोणार्क, कर्नाटक में हम्पी, तमिलनाडु में महाबलीपुरम, महाराष्ट्र में मुंबई, बिहार में नालंदा, गुजरात में अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, लद्दाख में लेह, तेलंगाना में हैदराबाद और असम में सिलचर शामिल है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के साथ मिलकर विदेशों में मौजूद 210 से ज्यादा भारतीय मिशन लगभग 2,500 स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। वहीं दिल्ली में शांति पथ, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कर्तव्य पथ, न्यू मोतीबाग, सेंट्रल पार्क और तालकटोरा गार्डन जैसे प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल श्रीनगर में डल झील के किनारे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में विशेष योग दिवस समारोह आयोजित करेगा। इस आयोजन में लगभग 1,500 वरिष्ठ नागरिकों के शामिल होने की संभावना है। इसी कड़ी में आकाशवाणी समाचार आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव जाधव का विशेष साक्षात्कार प्रसारित करेगा। आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 MHz चैनल पर

0: ये साक्षात्कार आज रात 9:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। श्री जाधव ने बताया कि कामकाजी लोगों के लिए सरकार ने वाई ब्रेक ऐप भी शुरू किया है।
1: लोग दिन भर चेयर पे बैठ के काम करना पड़ता है, वो लोग भी जब लंच ब्रेक होता है तब तक बहुत सारी थकान वो लोगों में आती है, तो वो थकान दूर करने के लिए भी उनके लिए वाई ब्रेक नाम का एक हमने ऐप निकाला है कि उसमें 10 मिनट में तुम चेयर पर बैठे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, करने से जो भी तुम्हारा थकान आई होगी वो दूर हो जाएगी।
0: दुनिया भर में भारतीय दूतावास और राजनयिक मिशन कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आज नेपाल में भारतीय दूतावास ने लुम्बिनी में योगासन कार्यक्रम आयोजित किया। चीन में भारतीय दूतावास ने पेइचिंग में आयोजित योग कार्यक्रम की झलकियां साझा की। उधर जापान में भारतीय दूतावास ने कल सुकिजी होंगन जी मंदिर में योग दिवस कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले संयुक्त अरब अमीरात में भी कई कार्यक्रम आयोजित हुए। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा कल आयोजित की जाएगी। परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश में 14 शहरों में होगी। इसमें 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों के अंतर्गत आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल आयोजित की। एक रिपोर्ट।
2: परीक्षा के सुरक्षित, पारदर्शी और सुचारू संचालन के लिए पर्यवेक्षकों, समन्वयकों, पुलिस बलों और प्रशासनिक अधिकारियों सहित 2,00,000 से अधिक कर्मियों की तैनाती की गई है। निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। एनटीए भ्रामक सूचनाओं पर रोक लगाने और किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी सक्रिय रूप से निगरानी कर रहा है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएगी। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा कल संयुक्त अरब अमीरात में 3 निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज जानकारी सशक्त भारत के संकल्प को साकार करने वाली सरकार की परिवर्तनकारी पहलों के बारे में।
3: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने भारत के हाईटेक क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। सशक्त भारत के 2 महत्वपूर्ण आधार हैं सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस स्टार्टअप्स की तेजी से बढ़ती संख्या। सरकार की नीतियों और फैसलों से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनी बल्कि अब निर्माण और डिजाइन से जुड़े कई इकाई भी काम कर रहे हैं। दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। इस योजना के तहत सिलिकॉन फैब, कंपाउंड सेमीकंडक्टर इकाई, असेंबली और टेस्टिंग सुविधाओं तथा चिप डिजाइन के लिए 50% तक वित्तीय सहायता दी गई। साल 2026 में सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया, जिसके लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों के सहयोग से शोध और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना, नई तकनीकों का विकास करना और भविष्य के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मिशन 1.0 ने इस जटिल उद्योग की मजबूत नींव रखी है।
4: हम अपने सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में ये हासिल कर पाए हैं। 75,000 से ज्यादा इंजीनियर इस क्षेत्र में प्रशिक्षित हो चुके हैं। 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज छात्रों को चिप डिजाइन करना सिखा रही हैं और भारत में 2 नैनोमीटर चिप्स डिजाइन की जा रही हैं, जो दुनिया की सबसे एडवांस चिप्स हैं। इनमें एनवीडिया और इंटेल की चिप्स भी शामिल हैं और ये सभी अब भारत में ही डिजाइन की जाती हैं।
3: वहीं भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में पूरी तरह काम करने की अनुमति दी है। अब निजी संस्थाएं रॉकेट लॉन्च, उपग्रह निर्माण और संचालन, डेटा संग्रह और वितरण तथा ग्राउंड स्टेशन जैसी गतिविधियां कर सकती हैं। इस नीति के बाद भारत में स्पेस स्टार्टअप्स की संख्या 2014 में केवल 1 से बढ़कर 400 से अधिक हो गई है। इससे देश की निजी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग 8 अरब डॉलर से अधिक की है और अगले 8 से 10 वर्षों में इसके 4 से 5 गुना बढ़कर 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। आकाशवाणी के साथ बातचीत में अनिल प्रकाश, स्पेस इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक ने बताया कि भारत में अब 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप्स हैं।
5: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्पेस सेक्टर रिफॉर्म, इस बीच की स्थापना

0: प्राइवेट पार्टिसिपेशन में को बढ़ावा देने वाली नीतियों ने एक ग्रे क्रांति की शुरुआत की है। आज भारत में 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप कार्यरत है जो सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल अर्थ ऑब्जर्वेशन और डाटा सर्विस जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन कर रहे हैं।
1: सेमीकंडक्टर मिशन की उपलब्धियों और तेजी से बढ़ती निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के माध्यम से भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान की संयुक्त सैन्य कमान ने आज घोषणा की है कि होर्मुज जलडमरू मध्य को एक बार फिर बंद कर दिया गया है। यह फैसला लेबनान में इसराइल की सैन्य कार्रवाई का हवाला देते हुए लिया गया है। सरकारी टेलीविजन पर प्रसारित बयान में ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर इसराइल के हमले जारी रहे तो वह और कड़े कदम उठा सकता है। उधर दक्षिणी लेबनान में इसराइल के हवाई हमलों में 2 बच्चों सहित 16 लोगों की मौत हो गई। ये हमले संघर्ष विराम की खबरों के कुछ ही घंटों बाद हुए। कैलाश मानसरोवर यात्रा के तीर्थयात्रियों का पहला जत्था आज नाथुला दर्रे से होते हुए चीन में प्रवेश कर गया। इस दल में 47 लोग हैं। चेन्नई में भारत ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। भारत ने 29वें ओवर में 1 विकेट पर 224 रन बनाकर जीत हासिल की। 5 विकेट लेने वाले प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत को शांति और सहयोग का पक्षधर बताया। कहा, वैश्विक संकटों और युद्ध जैसी परिस्थितियों का समाधान संवाद और कूटनीति से ही संभव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनजातीय समुदाय देश के विकास में महत्वपूर्ण भागीदार बन रहे हैं। ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त जारी की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व करेंगे। नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा कल। परीक्षा केंद्रों पर कड़े सुरक्षा प्रबंध। और चेन्नई में तीसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को हराकर श्रृंखला 3-0 से जीती। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: पर मोहब्बत के दुश्मनों ने इस पर लकीरें खींच के सरहदें बना दी। मैं जानता हूं वो लोग तुम्हें इस पार नहीं आने देंगे, मगर ये पवन जो तुम्हारे यहां से होकर आई है तुम्हें छू कर आई होगी। मैं इसे सांस बनाकर अपने सीने में भर लूंगा।
1: ये नदियां जिस पर झुककर तुम पानी पिया करते हो, मैं इसके पानी से अपने प्यासे होंठों को भिगो लूंगी।